रहाउ। सब सुरति मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। पुत भूखै खाए चलिया है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाउ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए।

को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा। बिनौ करौ गुर पास,

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुख वासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी।

सोई थी सी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला

रहाउ। नाहौ जति सति नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवां।

तारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहै प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सैव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो, घट घट के

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर

तज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी

संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन

काला दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तगा वह हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

सुकह टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। हुवे सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटी तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पांजवां।

0: सम्मान योग सत्संगी जन, कल और अज दो दिन आप संगत की सेवा विच जो सतगुरु ने बख्शिया कीर्तन की दात आप नाल मिल के वो सांझ पाई है, सतगुरु बख्शिश करे। बड़ी सुनी बाणी गाई बाणी साढ़े हिरदे दे वसे। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह सेवा का मैं धन्यवाद करता हाँ जो मैंने माण देंदे हैं। अज मेरे वास्ते एक होर भी गल, मेरे बच्चों सैकटरी साहब ने बहुत उत्साह दिता। ये छोटे बच्चे जिहड़े नाल बैठे हैं, बेटा गुरिंदरपाल के बच्चे हैं दोनों, दीपेंद्र सिंह और दर्शदीप सिंह, बड़े होनहार बच्चे हैं। मैं कल बिठा तो लिया पर मैं डरदा रहा कि कितने प्रबंधक गुस्से ना हो, न्याणे किधर बिठा ले, कई बार इस तरह हो जाता। पर बड़ा चंगा लगा जो सैकटरी साहब उन्होंने इन बच्चों होरना बच्चों का प्रेरणा स्रोत बताया दसिया। और यह भी गल है कि ये हुणे ही आए हैं इंडिया तो, अजे शायद नींद भी नहीं पूरी हुई इन्हां दी, थके हुए भी हैं, पिछले हफ्ते ही आए हैं। और आउंदिआं तुसीं जो ये प्यार दिता है इन्हां दी सारी जिंदगी की एक याद बन गई। और जदों ये गुरु घर विच आउणगे उदों क्या करनगे, असीं जदों पहली बारी आए सी सानूं प्रबंधक वीरां ने सैकटरी साहब ने विशेष तौर ते प्यार दिता।
1: बोले सोनिहा
0: सारी जिंदगी इन्हां दे मां बाप नूं भी याद रहेगा, इन्हां नूं भी याद रहेगा। पर सच्ची मुच्ची ये बच्चे बड़े होनहार, ये नहीं कि मेरे हैं तां करके मैं कह रहा हाँ। तुसीं देखो दीपेंद्र सिंह ने जिहड़ी पग बन्नी है ना जी, ये बड़ी मुश्किल है पग, एक पग चो एक लड़ चो दो दो तीन तीन लड़ कड्ढे हुए हैं। तुसीं ध्यान नाल देखो बहुत सोहनी पग बन्नी है और कई तरह की पग बन लैंदा है। तबला इन्ना कमाल का बजाउंदा कि प्यो नूं भी पिछे छड़ गया, ये भी अच्छा बजाउंदा। गुरिंदरपाल सिंह उस्ताद भी है और बड़ी मेहनत की इन्होंने अपने बेटे नूं आप सिखाया। ये जो दर्शदीप बैठा है छोटा जिहा, मैं इक्को शिगिरद बनाया ये है, हालांकि मैं सिखाया कुछ नहीं, मैं अपने नाम लिख लिया कि मेरा शिगिरद है, सिखाया गुरिंदरपाल सिंह नहीं है। बहुत प्यारा सुर दे विच कीर्तन करदा, तो जे प्रबंधकों वालों आग्या हुई तो कल नूं इन्हां कोल शब्द भी एक पढ़ा लवांगे। बेटा दीपेंद्र सिंह ते मैं कल गुरिंदरपाल नूं कहा, मैं कहा तबला लैके आए उन्हां दोनों आग्या मिल गई सैकटरी साहब उन्हां कोल, सैकटरी साहब साडे बड़े डाढे है, उन्हां कोलों आग्या मिल गई कल बच्चे तुहानूं शब्द भी सुणाउणगे ते मेरे नाल दोनों प्यो पुत्त तबला वजाउणगे। इस करके नहीं मैं कह रहा कि मेरे बच्चे हैं तो मैं उन्होंने सिफत कर रहा, ये बच्चे जिहड़े हैं जो स्टेज तो मंच तो तुहाडे बच्चों के सामने आउणगे तो उन्होंने बच्चों उत्साह मिलेगा। जिवें सैकटरी साहब ने कहा भी है कि अपने बच्चों लैके आओ, इन्होंने बच्चों देख के होर बच्चों प्रेरणा मिलेगी। और ये एक जरूरी नहीं कि इन्होंने बच्चों ने बिल्कुल प्रोफेशन नहीं करना, इन्हों की पढ़ाई है चल रही है। और यह भी गल है कि ये बड़े होशियार हैं, स्कूल में दोनों ही भरा जोड़े वो फस्ट आते अपनी अपनी क्लास चो ने स्कूल चो नाले, इन्हों का स्कूल में बड़ा माण है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी कला में बड़े माहिर हैं। तो अजिहे बच्चों को देख के होरना बच्चों को उत्साह मिलेगा, इन्होंने प्रोफेशन नहीं करना बिल्कुल नहीं करना, पर यह जरूर है कि इन्होंने संस्कारों में कीर्तन है और सारी जिंदगी ये कीर्तन बनिया रहेगा और गुरमत का वासा रहेगा अंदर, गुरु के नाल प्यार बनिया रहेगा, गुरुद्वारे की भै भावनी बनी रहेगी जो गुरु घर विच संगत विच बच्चों नूं कीर्तन सुनाउणगे। सारी जिंदगी इन्हां दे अंदरों गुरुद्वारा नहीं जाएगा, गुरु नहीं जाएगा, बैठना आएगा इन्हों बड़ा सोहना बैठते हैं इन्होंने बैठने का जरा जरा ढंग हों ना बैठने का गुरु घर में टिका नाल। और हूं तो वे हो गए, निके जे मेरे नाल बैठते सी बिल्कुल ही नहीं सी रौला रौला पाते, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਟਵਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਬੜੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ।

और प्रतीत बख्शिश करनी, रहमत करनी, समूह संगत नू उदम बख्शिश करना, सेहत याबी बख्शिश करनी, अपने दर घर दियां हाजरियां भरन दे लई सच्चे पातशाह जी आप जी ने उत्साह ते प्रेरणा बख्शिश करनी, गरीब नवाज आप जी के हजूर अरदास बेनती है, दर घर दे प्रीतवान बीबी मनजीत कौर औजला, भाई मंदी संदीप सिंह धालीवाल जी की सेहत अते तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती करते हैं, बेअंत माया गुरु की कार वास्ते भेटा अर्पण की, आप जी ने कृपा करनी भाई संदीप सिंह जी नू देह अरोगता की दात बख्शिश करनी, रहमता करनिया परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, सतगुरु जी ओ कृपा करो दर आई समूह संगत नू निवाज दे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, अखर वाद घाट भुल चुक मुआफ कर।

बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगोप जी सहाय वार। श्री भगोप जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक ले त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइए। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। निमाणिया दे माण निताणिया दे तान न्योटिया दी ओट गुरु गरीब निवाज। धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे मुबारक दरते अरदास बेनती है। सच्चे पातशाह जी आप जी दे भाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया है। सतगुरु जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जिया ने खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया। महाराज जी बेअंत भुल चुक हो गई होण दी आप जी बख्शन योग हो। सारिया संगतां दीआं तिल फुल भेटावां दर प्रवान करना महाराज जी। सब दे घरां विच सुख वरतायो। रहण आई है सुखमई बतीत होवे सेवादार हाजर ने। आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी। सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले

वस्त परी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाही तिष्ठा कुरको रख मन बाही जी प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे तिहाई सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भूग नानक सदा त्याईये त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्या कतवर लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सुविजय मन आठ पहर ताका जस का विजय जे प्रसाद तू सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मानु सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दर कह मान पावह नानक पद से ती कर जावे जे प्रसाद अरो कंचन देही लिवलावो तिस राम सुनेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभु ताके जी प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सा सिमरो प्रभु उच्चे जी प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जी प्रसाद भूखन पहरी जय मन ति सिमरत कवाल सकी जय जी प्रसाद अस्वस्थ सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जी प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य सहते आई तिसे त्याय जो एक अलख यहाँ उहा नानक तेरी रख जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सा सा चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद त्रिनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलह जे प्रसाद संपूर्ण फलह जे प्रसाद परम गत पावह जे प्रसाद सुख सह समावह सा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल नमन विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावें साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मतुतम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया तू कछु न किन हूँ लया जित जित लाओ तित लगै हरनाथ नान किन कह कछु न हाथ सलोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्च कथाष्टपदी साध के संग कूजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साधक शोभा परमा हि सुमानी साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेल साधक संग मनोहर भैन साधक संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस त्यों नहीं बैर साधक संग न बिगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साधक संग ना ही हो ताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग ना कब हूँ तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्ता गोचर लै साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कह कुर्बान। साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कह संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे। साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कह संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जन्म। साधक संग नहीं कचकाल, दर्शन पेटित होत निहाल। साधक संग कलुख तहरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाऊ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साधक महिमा वेद न जानहै, जीता सुनै तीता बकिया नै। साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर। साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत। साधक शोभा उच ते उची, साधक शोभा मूछ ते मूची। साधक शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख। जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान। जैसे राज रंग को लागै तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक। ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ। नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगासु। जैसे तारू पर आकाशु, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा। मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय। नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल तीरी ना। तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी ऊपर आसु। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मनवाही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक
पुर तारै जुवंतर नाम। सर्व मैं भिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानक पर सगन निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसु। मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न भिक है नेत्र। साध की तैल संग हेत कर, न सुने काहू की निंदा। सबको जाने आपस ते मंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस। वैसन सो जी सुपर सुपर सन, विष्ण की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस वैसन का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वह नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। मन ते बिनस सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। सासन पापा मलकू वै, तिस भगवती की मत उत्तम हुए। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तने अर्पे विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुदय, राम नाम आत्म में सोदय। राम नाम सारस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमृत बुझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल। चौवर्ण को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्ण में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होइ, सासन पावै जिन को। कर कृपांतर उतारै, पस प्रीत मुक्त पात्र को तारै। सर्व रोग काहू कद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिसने दुरी आया दास, दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर कै परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूची परे। सगुर संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा सोग, सदा नंद तै नहीं बेयोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिकाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन्नाओ। आपे करण करावन जोग, प्रभावे सोई फुन होग। पसर आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक स्तुत करे अनेक जनंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कबका विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभेगात्म निकोर। कई कोट पर दर्भ को हिरै, कई कोट पर दुख न करह। कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट शशियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान अविंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपना सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस्था मसातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत तर शास्त्र। कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार।

पदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसनित्या गोत्रांग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो सा संग गण सागर तरहो हर तन के पर लेहु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जीव गुण गोविंद अमृत रस पीयो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलिक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेवा जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी रब की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहूत निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब त्यु छिपाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम शांत रित नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तब योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कहमत सगल देवदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कुए सब जुग महता की गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट परा सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा कै मस्त कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पह परम।

शुद्ध शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर परसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी हर बिन आवर न देखो कोई हर बिन आवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन आवर न कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई।

रसना रस समाणी साचो आलख वेडाणी पाकी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नु पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नौ नावने दो तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। ਇਹੋ ਸੱਚ

सचो त्यावै जात उदभावै गुरमुख जना बुझावै। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे कर गावहे।

गुर सिख लंग गुर पह जाई, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर

0: चढ़ाओ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नजरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वालो ले बहुत अनंत लाटू मा दानिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा सुवे चढ़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणित ना अंत
1: बंदन बंद पवाए सोए पै करत नचे सब कोए नच नच हसे चलने सिर उड़ ना जाए सिद ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी ना तरन रंकार है।

फट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोए बपले चढ़तर पव्यंग्यार, नानक जिन करता कारण किया सो जाने कर तार। कोड़ी बन सतगुरु।

0: और मूर्ख पंडित हिकमत उज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मोख द्वार, जति सदा वह जुक्त न जाने छठ बह कर बार। सबको पूरा पे हो वह घट न कोई आख, पत परवाना पिछे पाई कां। नानक तोलिया जप
1: महला सोए, सब निशाला मारिया करता करे सोए। अगै जात ना जो रह अगै जियो न में, जिनकी लेखी पत पवे चंगे से के पौड़ी तुरकुन न।

0: दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा। ओ जात मह जो जोत मह जाता कल कला पर पू रहा। तू सच्चा सब शिव सवाल्यो जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दं

अवर न पेखै एकस बिन कोय। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म

ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,

जिस जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मह जानै अस्थूल चौ वरना कु दे उपदेश नानक उस पंडित को

तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया, सदा निकट

तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभाव है सोई पुन होग, पसरे वाप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा

नाम संकिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजन्ते आत्म मह पार ब्रह्म लहन्ते। कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन।

तुम्हारी प्रभाव है मानुक गत पावे प्रभाव है ता पात्र करावे प्रभाव है बिन शास्ति रखे प्रभाव है ता हर गुण पाखे प्रभाव है ता पत तुधार है आप करे अपन विचार है दुहा सिरिया का आप स्वामी खिले बिकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर नयावे कहु मानुख ते क्या हुए आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किछ ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिखिया मह रचे जे जानत अपन आप बचे पर में भूला दह दिस्तावे निमक माही चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु नयावै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी

कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू हुए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई हुए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू सा संगत हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रतेक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट

किया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बोजून परमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक इन्हा मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हो कर गरबावे तृण समान का संग न जावे बहु लश्कर।

पसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लाकूट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरते सब काजै नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसै प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किच किनो सु अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझे देखे करे विवेक आपह एक आपह अनेक मरे न बिनसै आवे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेश समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसकाउ करने हार तुस्ते पुस्ते भिन कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किन बख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना कोट मदे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र

संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोए, संत कै दुखन तान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन तृप्त जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावै ता कोई भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका पी हुए मुख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी कौ नान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन में मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी कौ नाही ठाऊ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद्वीत ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लूथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, आपन भी जापे ही काहे, संत के दुखी को वरन राखन हार, नानक संत पावै ता लय उबार, संत का दुखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिटिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरे न जीवाइय, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठचलै निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई हुए, पया किरत न मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए, सब घर तिसक्यो करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहु दिन रात, सहत्याहु सास विराज, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पु नाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक, तजो सियानप सुरजन हो, सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, अष्टपदी, मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न न लागे कोए, उस्तद

ला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सु सेवक को किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप सुमाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब किच मूल। नानक सो सुखम सोई अस्थू न किच जन्मे न किच मरे। आपन चलता आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट। आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप। अनिक जुगत रच थाप थाप अविनाशी नाही किच खंड। धारण धार रहे ब्रह्मांड अलक भेव पुरख प्रताप। आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सुसु बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जब पहे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए हो वैसो हुए करने हार पछाने सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए।

है नित ध्याई हर पुरख निरंजना रहाउ जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जह हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर

0: नानक बहा पकर सतगुर निसतारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ना खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमके एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। बड़े खुशियां भरे मौके ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र सलाही दवार दियां हाजरी भर के बख्शा लारी परम सत्कार जो साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एट द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ ऋषि मोदी, सन ऑफ श्री निमेश मोदी एंड मिसिज अरुण मोदी विद नानकी कौर, डॉटर ऑफ सरदार जसदीप सिंह जी एंड ते बीबी एंड मिसिज कमलजीत कौर। आई कंग्रेचुलेट द कपल एंड देयर पेरेंट्स, देयर रिलेटिव्स एंड देयर फ्रेंड्स ऑन बोथ साइड्स। So let's do the greeting first. I hope you will join me with doing the greeting. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. So, Tan Tan Guru Granth Sahib Ji blessed us with this happy moment of the marriage of Rishi Modi and Nanki Kaur. The whole ceremony was done according to the Sikh Rath Murjada. Also appreciate the couple. They did excellent job of doing everything right. And I pray to God, to Vaheguru, to give them a very, very happy married life, full of successes and all the time everything in the Chardi Kala, we call it in Gurmat. Also, you both have taken the vow by taking four rounds around Guru Granth Sahib to stay together in this life. In Gurbani, it says, Jodi Jive Jag Char Tihari. Means, the couple will be together forever and forever. So that's the blessing we get from Gurbani. Now I request our acting priest, Bhai Sahib Namdeep Singh Ji, to honor the couple. They can stand to receive this honor, both of them.